परित्राणाय साधूनां विनाशाय सत्कुरुदां धर्म समस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।